0: उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गरौं। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकारको रक्षा गरौं। कारोबारमा बिल विशोक लिने र दिने गरौं। कारोबारलाई पारदर्शी बनाऊ। नाफाको उद्देश्य झुटा भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना नदेऊ। वस्तु सेवाको मूल्य मात्रा म्याचकी मिति गुणस्तर यकिन गरे मात्र खरिद बिक्री गरौं। वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट कुनै हानि नोक्सानी भए स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गरौं। वस्तु तथा सेवाको प्रयोगबाट स्थिति पुगे क्षतिपूर्ति मागौं। निष्पक्ष तथा तथ्यपरक सूचना पाउने उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गरौं। भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचनाको कारण उपभोक्ता ठगिएमा स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गरौं। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: Smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart, smart

0: श्रीमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई आज सम्झनुहोस्।
1: हाम्रा सेवाहरू
0: ओपीडी सेवा,
1: विशेषज्ञ ओपीडी सेवा,
0: निशुल्क औषधि वितरण,
1: सशुल्क फार्मेसी सेवा,
0: फिजियोथेरापी सेवा,
1: अकुपंचर सेवा,
0: योग परामर्श सेवा,
1: क्रियाकल्प सेवा,
0: पूर्व कर्म पञ्चकर्म सेवा,
1: छार सूत्र सेवा,
0: जलौका सेवा,
1: अग्निकर्म लगायत अन्य विभिन्न सेवाहरू,
0: प्रयोगशाला सेवा बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म।
1: विस्तृत जानकारीका लागि
0: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय बागमती करिडोर गैरीगाउँ काठमाडौँ, फोन नम्बर 01-4110-6096, 98-514-2463।

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुतुन्न नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु

0: অনেক রোগীতর্ক রকম তোমারই সাধক নম্বর এখন করে সম্বন্ধে সূচনা আদরণীয় সেবাগ্রাহী মহানুভাবহরু তপাইলে আফ্নো সওয়ারী সাধনকো বার্ষিক রূপমা বুঝাউনু পর্ने सवारी कर नवीकरण वस्तु लगायत अन्य कर सम्बन्धी वितरण हेर्नका लागि सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गएर कर प्रिन्ट माग्न बैंक भाउचर गर्न अघि सवारी कर तथा वस्तु एकिन गर्न तथा कर बुझाएपछि प्राप्त हुने बिमा आफूले बुझाएको करको रकम र आफ्नो सवारी नम्बर एकिन गर्न हुन यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय किराँत गर्नु मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौं, सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौं, मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौं, मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौं, प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत बनाऊ, जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं, वन संरक्षण वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ, ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ़ाऊ, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ, वातावरण संरक्षण गरौं, जीवन रक्षा गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
0: बालबालिकालाई लागू औषध दुरूपयोग गर्दछ। लागू औषध सामाजिक अपराध हो, कोही कसैले प्रयोग नगरौं, बालबालिकालाई लागू औषधको प्रयोगबाट टाढा राखौं, बालबालिकाको संगतमा ध्यान दिउ, लागू औषधबाट हुने हानि र कानूनी परिणामको बारेमा जानकारी दिउ, बालबालिकासँग नियमित संवाद गर्ने गरौं, बालबालिकालाई घरमा माया र समय दिने गरौं, विद्यालयमा जीवन उपयोगी शिक्षा दिने गरौं, बालबालिकाको सकारात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा सारी सन्देश
0: सवारी साधनको इन्जिन र तेलपुट रोकिने सम्बन्धी सूचना आदरणीय सेवाग्राही महानुभावहरू तपाईले आफ्नो सवारी साधन नयाँ खरिद गर्दा नामसारी गर्दा सवारी साधनको इन्जिन र चेसिसको अवस्था रुजु वा अन्य कुनै कैफियत भए नभएको रुजु गरेर मात्र खरिद बिक्री गर्नका लागि यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय किराँत गर्दछ। सड़क प्रयोग गर्दा ध्यान दिउ, सड़क सीमा अतिक्रमण नगरौ, सड़क सीमामा अस्थायी एवं स्थायी समय सीमा निर्माण नगरौ, सड़कको नाली थल तथा पानी निकास बन्द हुन नदिउ, सवारी चलाउँदा लेन अनुसार पालना गरौं र गरौं, सवारी चलाउँदा ट्राफिक नियमको पालना गरौं, सवारी साधनमा झुन्डिएर वा छतमा बसेर यात्रा नगरौं, सड़कको क्षमता भन्दा बढ़ी भार प्रयोग नगरौं, जेब्रा क्रसिङबाट माथि बाटो काट्ने गरौं, सड़कको तत्काल मध्यसीमार गर्ने गरौं, यात्राको क्रममा कुनै समस्या भए नजिकको प्रहरीलाई खबर गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
0: मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौं, सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौं, मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौं, मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौं, प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत बनाऊ, जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं, वन संरक्षण वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ, ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ़ाऊ, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ, वातावरण संरक्षण गरौं, जीवन रक्षा गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
0: यौनी हिंसाबाट बचौ र बचाऊ, यौनजन्य हिंसा सामाजिक अपराध हो, बालबालिका यौनजन्य हिंसाको जोखिममा हुन सक्छन्, हिंसा छिमेकी आफन्त साथीभाइ परिचित नातेदार र जसुकीबाट हुन सक्छ, अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको व्यवहार ख्याल राखौं, बालबालिकाको चालचलन पानी बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आएको हुन सक्छ, त्यस्तो पाइने उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौं, बालबालिकासँग नियमित सम्वाद गर्ने गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदालत सेवा ग्रहण महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रबंधन सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क रखने अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आईना गुनासो सुने अधिकार कार्यालय प्रमुख सीधी संपर्क लग्न सकने
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर
0: दीदी आज भोलि मेरे सामान छिटो घर पर आने एक्ल बस रुचा बिगड़े जानू पैला खूब पढ़ने मं अताब हेने मान पैला तो तस्त मं के दुख कर कमा को पैसा बीच में अलिअल जमा करते थे अस्थि घर को किन्नपर्यो निकलने गो पैसा नहीं सामो सामो कुरा में किचकिच मत कर घरबारे बिग्रने जस्त पो हो सको लौ न दीदी समझ दिखो ये तो लगोश कोलकाता में बेचने जस्त लक्ष कोटेशी लगोश तो भाई के भाई तिमला दीदी भन त
2: खाई दीदी के हो साथी गांजा खाना जबरदस्ती करे मेरे को नहीं भन्न सकिन खाए ते पी बिस्तार बारी हो गए अलग तो लड़ लगे छाटने सकिन अभी गाड़ो भैर
0: गाड़ो साहो मैं कहीं ठा छ अभी खुरुक्को हिस्सा तो छाने पर्च तुम्हें तो हम सहारा हो कि इस बर्बाद होने काम करते समझो तो हम आमा बुआ ने समाज में बनाने गए पीछे प्रतिष्ठा छुट्टे इसको संरक्षण तुम्हें तो
2: हो दीदी धन्यवाद अब मैं सदैं झाड़े एक असल नागरिक बनने प्रयास करने मेरे श्रीमती धीरे दुख दिया मेरे सब ठीक परिवार मैं माफ कर
0: बारिश लज सृजना करी धुबेसरी तुलाउने वस्तु व पदार्थ नागु पदार्थ वा नागु औषध हो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नागु पदार्थ स्वस्थ शरीर को लगी प्रयोग कर आवश्यक नभएको को पदार्थ परिभाषित गरेको छ यस्ता पदार्थ ने बारिश को केन्द्रीय स्थानीय प्रणाली में प्रभाव पार्न का साथ ही उसको भावना और सुचलता परिवर्तन ल्याउँदछ त्यसैले नागु औषध को प्रयोग प्रसार प्रसार रोकथामा जोर दिन स्वस्थ जीवन को सभ्य समाज निर्माण में हाथी वालों लागू असर बुक्का समाज निर्माण का लगी जिला प्रशासन कार्यालय सुनो खबू रू एफ एम को संयुक्त प्रयास में सुरक्षित जारी सकोस
1: युवा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मध्य दुधकोशी समावेशी विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मध्य दुधकोशी को समृद्धि मध्य दुधकोशी गांवपालिका सोनकुंड के सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्रो बिहार साझे 7:30 बजे देखि 8 बजे समय सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज अनलाइन और सुनो एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ कहाँ पुग्यो कहाँ पुग्यो जनप्रतिनिधि को विनियोजित बजेट को काम र प्रभावकारिता नागरिक को गुनासो र सुनवाई समग्र स्थानीय तह को विकास र सिद्धि नेछा चिल्यन गाउँपालिका सोलुखुम्बुको सहकार्यमा उत्पादित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो नेछा चिल्यन हरेक महिनाको पहिलो सोमबार र अन्तिम सोमबार साँझ 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुनु एफएम 101.2 मेगाहर्ज www सुनु एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ नेपाली सेनामा नयाँ सैन्य भर्ना सम्बन्धी सूचना नेपाली सेनाको सूची दरबन्दी भित्र रिक्त रहेको सैन्य पदको दरखास्त आह्वान गरिएको हुँदा आवश्यक योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकतालाई नयाँ भर्नाका लागि आह्वान गरिन्छ दुर्गापोक फोन ओखुढुङ्गा ब्यारेज ओखुढुङ्गा दरखास्त आह्वान मिति
0: यही पुस्तक 18 गतेदेखि 16 गतेसम्म दोब्बर दस्तुर भुक्तानीकी जेठ 17 गतेदेखि जेठ 30 गतेसम्म थप जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 0735 5576 साथै भ्रमण सम्बन्धी थप जानकारीको लागि यही पुस्तक 18 गतेको गोर्खा पत्र दैनिक नेपाली सेनाको वेबसाइट www.nepalarmy.in मा लगइन गरी हेर्न सक्नुहुन्छ।

0: पक्षीगढ़ में भर्ना होने संबंधी सोलखुमु बहुमुखी कैंपस को सूचना।
1: विगत 35 वर्षदेखि उच्च शिक्षा को क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान संचालन और व्यवस्थापन करते आई साथ ही यूपी दक्षिण एवं अनुपति शिक्षक द्वारा अध्यापन भईरिक सोलखुमु बहुमुखी कैंपस में इसे शैक्षिक सत्र 2008-09 कक्षा 11 में भर्ना भईरिक सभी सूचना मार्फत जानकारी
0: भर्ना कार्यक्रम में होने मिति
1: भर्ना म्याद एक 17 गतेदेखि असार 15 गतेसम्म कक्षा संचालन 2083 साल असार 16 गतेदेखि रजिस्ट्रेशन फार्म भरने म्याद 2083 साल असोज 20 गतेसम्म पढ़ाई हुने समूहहरू कम्प्यूटर साइंस समूह कानून समूह व्यवस्थापन समूह मानवीय समूह शिक्षा शास्त्र समूह कानून समूह में 60 जना र कम्प्यूटर साइंस समूह में 40 जनालाई मात्र भर्ना लिनेछ। थप जानकारी को लागि सम्पर्क नम्बर 98-510-1055 छ 98-41-63-53-37 98-42-84-87 में सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
0: उद्धव कुमार शर्मा कैंपस प्रमुख सोलखुमु बहुमुखी कैंपस सल्लेरी सोलखुमु।

0: उज्जवल एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संक्षेप सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: नाविक एयर बिहान को 11 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा बड़ा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंडू

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाली सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटर सकल तथा स्कूटर अब उत्तरी जिला को मिलन सूचना
2: हुंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भद्रदो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
3: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी ओखलढुंगा खोटाङ को डिजिटल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जिनसुके मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
3: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
2: अनलाइन बुकिंग करी भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत
3: ओखलढुंगा को आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस टाली सिद्धिशरण नगरपालिक 11 गुरुमारे भिजन
2: संपर्क नंबर 0 37 590 222 98 52 88 0 222 98 42 80 30 00।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चोकमा।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
3: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तेल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनुका साथै सर्भिसिङ सेवा
3: एक्सचेन्ज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिङ गरे भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरीको सुविधा समेत रहनेछ।
3: ओखलढुंगाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुञ्जाङ ओखलढुंगा।
2: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852988002222 र 9842803000।

0: टोलू एफ एम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sanche Sulu FM Studio Time
2: It's 1 PM Dusako Egg Bagger
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु
2: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम सुन्न एफएम मा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न

0: कर प्रिंट रुजुकर को रकम रवारी साधनपुर नंबर एक गणेश संबंधी सूचना आदरणीय सेवाग्राही महानुभावर तपो सवारी साधन को वार्षिक रूप में बुझाउन पर्ने सवारी कर नवीकरण दस्तूर लगायत अन्य कर संबंधी वितरण हेन का संबंधित यातायात कार्यालय में गए कर प्रिंट मांग बैंक भोक्सर करना अगि सवारी कर तथा दस्तूर एक तथा कर बुझाए पी प्राप्त होने बीमा आपने बुझाए कर को रकम आपको सवारी नंबर एक सूचना मार्फत अनुरोध कर
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय किरातनगर।

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना
1: अदनी सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रवाह होने सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को लगी नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन नगरी आपो सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कने गुनासो आए में गुनासो सुनने अधिकार कार्यालय प्रमुखसंग सोझे संपर्क राख सकने
0: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर
2: दीदी आज भोलि मेरे श्रीमान के छिटो घर पर आने एक्ल बस् रूचा दुब्राउद जानूक पैला खूब पढ़ने मं अब हेन मंदन लौ पैला तो तस्त मं कि दुख कर कमा को पैसा बैंक में अलिअल जमा करते थे अस्थि घर को लगी कई सामान किन्न पर्यो निकालने गो पैसा नहीं सानो सानो कुरा में किचकिच मत कर घर बारे बिग्रीने जस्त पो भईसको लौ न दीदी समझाई दून पर्यो यू तो लागौसो कोलकाता में देखने जस्ते लक्षण कत लागौसो तो भाई के भाई तिमला दादी भन त
3: खे दीदी साथी गांजा खाने जबरदस्ती करे मैं ना भन्न सकिन खाए तेस पी बिस्तार बानी हुई गयो अलग तो लड़ लगे छाटने सकिन अहो भई
2: गाड़ो साहो मैं कहीं ठा छ अब खुक्को हिस्सा तो छाड़ पर्च तुम्हें हम सहारा हो कि इसी बर्बाद होने काम करते समझ त हम आमा बुआ ने समाज में बनाने भाई जीत प्रतिष्ठा छुट्टी इसको संरक्षक तिमें तो हो
3: दीदी धन्यवाद अब मैं सदैं छाड़े एक असल नागरिक बनने प्रयास करने श्रीमती दुख दिए मेरे सब थोक परिवार हो मैं माफ कर
4: बारिश में लव सृजना करी धुमेसरी तुल्याउने वस्तु व पदार्थ लागू पदार्थ व लागू औषध हो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लागू पदार्थ स्वस्थ शरीर को लगी प्रयोग आवश्यक नभएको पदार्थ भनी परिभाषित गरेको छ यस्ता पदार्थ ने बारिश को केन्द्रीय स्थायी प्रणाली में प्रभाव पार्नु का साथ ही उसको भावना र सोचाई में परिवर्तन ल्याउँदछ त्यसैले लागू औषध को प्रयोग उसार प्रसार रोकथाम र नियन्त्रणमा जोड़ दिन स्वस्थ जीवन र सभ्य समाज निर्माणमा हातेमालो गरौं लागू औषध बुक्का समाज निर्माण का लागि जिला प्रशासन कार्यालय सोलु खगो र सोलु एफएमको संयुक्त प्रयासमा जनहितमा जारी सन्देश
5: युवा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध माप्य दूतकोशी समावेशी विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र माप्य दूतकोशी को समृद्धि माप्य दूतकोशी गांवपालिका सोलुखुम्बु को सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्रो बिहीबार सांझ 7:30 देखि 8 बजे समय सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज अनलाइन र सोलु एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चौकमा। होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तेल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटरहरू कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनुका साथै सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेन्स को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइनबाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाई ओखलढुंगा।
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852988002222 र 9842803000।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सुरु एफएम स्टुडियो टाइम
2: इट्स 4 PM अपराह्नको 4 बज्यो
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा में ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुंडा नगर पालिका 5 सोलु कुंभू

0: ए हो कस्तो राम्रो कुरा, आवश्यकता अनुसार सबैले सबै काम गर्नुपर्छ। त्यसो भए फेरि पढौ है। आमाले
1: लैङ्गिक परम्परागत भूमिकालाई रूपान्तरण गरौं, समानताको जग बसालौं। नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
2: नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर, हाम्रो प्रतिबद्धता पेट्रोलियम पदार्थमा शुद्धता। यहाँबाट डिजल र पेट्रोल तपाईँले भनेकै समयमा तुरन्त उपलब्ध छ। सम्पर्क व्यक्ति परशुराम तामाङ 9847-85-35-19, समुन्द्र साक्य 9861-83-35-34, टेलिफोन 0835-20-43। नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर प्रोपाइटर तोरण कुमार श्रेष्ठ 9862-82-13-87। नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सँगै न्यू आइस मोटर पार्ट्स एण्ड सप्लायर्समा सम्पूर्ण गाडी मर्मत सम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ। यहाँ साना तथा ठूला जुनसुकै गाडी मर्मत गरिन्छ। सम्पर्क रमिला श्रेष्ठ 9862-93-06-46। नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर, सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 7 गार्मा, चोरबौद, सोलुखुम्बु।

0: Ai, o rádio Solu é bem importante.
1: Solu FM 101.2 MHz. उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
2: संचय सुनो एफएम स्टूडियो टाइम
3: 5 PM साथ को 5 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: ライフを参考にしてください。
1: सूचना सूचना सूचना सुरुंग जुन गैसी जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भइरहेको छ। निर्माण कार्य क्रम में माथिल्लो सुरुंग ढुंगा खस्ने संभावना रहेकाले तल्लो फेरा साधन क्षेत्र में घासपात काट्न गाई वस्तु चलाउन तथा आवत जावत गर्ने स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारणहरूलाई सावधानी अपनाउन हुन यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। कृपया जोखिमयुक्त क्षेत्र में अनावश्यक रूप में नजानुहोस् र आफ्ना बाल बालिका तथा चौपायालाई समेत सुरक्षित राखिदिनुहोस्। सुरुङ जुन गैसी उपभोक्ता समिति।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: टाइम चेक सूर्य फिल्म स्टूडियो टाइम
2: 6 PM साँझ को 6 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

मार्गदर्शन केतंग सन्सिसियो बाङला आदरणीय श्रोता रो मागदे राङनी दचु केतंग रि स्वागत मुला प्रिय रो मागदे राङनी चबन मुला रेडियो गामिसियोसी गान्न केतंग सानबला लागि राङनी ज लानन धन्यवाद दोनगे मानबा मुला राङनी जे सुभन्दा अगाडि गान्न केतंग सानबला दिबङदा आसम मुला यारबला केतंग रि याङजे क्रूस रि परमेश्वर ल सहनशीलता देव विषय रि वचन सनबला मुला तिमिनो याङथे विषय रि वचन सनसेला मुला राङनी जे केतंग सन्से विहाबला पत्र पत्रिका सल्लाह सुझाव लागि लानन धन्यवाद मुला फेरि हाबदिन रिनो एरङलेन राङनी ल सल्लाह सुझाव ल आशा लब मुला नाइ राङनी ल मिन प्रतिभारी यारके लब मुला एक नम्बर रे मुला विपिन घिमिरे दोहरी पाँच रमाइलो बस्ती गुल्मी च्याम्जे दोस्रो रिमुला उमेश आर्याल मालिका उच्च मावि सिमलटारी गुल्मी च्याम्जे अनि तेस्रो रिमुला हरि पौडेल मालिका उच्च मावि सिमलटारी गुल्मी च्याम्जे अनि उत्तम गर्दी भरभङ पाँच सुन्दर बस्ती गुल्मी च्याम्जे प्रिय रोमा गदे एरोङलेन गान्दा पत्र पत्रिका पुहावा थम्लेसीको विवाह नै राङनी दा अनुरोध लब मुला श्रोता तर याङ परमेश्वर ल वचन सन्मपट्टि सेगे तिनी याङ क्रुस्त सीमा परमेश्वर जेङा छ्याङ सैदिव शक्ति जन्म मुला विवाह विषय रि बातचित लाई प्रभु येशु ख्रिस्टले दुःख कष्ट सैदिव माले परमेश्वर आबजे थे सर्वज्ञानी मुबमुला थे जे याङला पापला कारण राङला अनुहार याङ क्याम्जे फिक्तोजी तर राङला चाजादा राङला सेम विचार बदलाए आदिनी हजुबा घटनाका दे दोहोती लैनो थे छाङमान थेदा थाहा तबा जे आहिन कि थे घटनाका दे थे जे मानबला विषम रोक्तिबा हामसेला मुबला तसी विषम थे सर्वशक्तिमान हिन्बमुला जब मिल भिड प्रभु येशु द चुङमदा गेस्य मनी बगैचारी हाजे थे बेलरी पत्रुसे तरवार टुसी मिला नबिङ थाबिन्जी तर येशु जे सुङजी एजे ठिक डानबा ताङै नला आपद बिन्ती लबा आम्बा छेजेङा त बाह्र पल्टन भन्दा बढी स्वर्गदून जिटाइदिसी आपिन बार पल्टन किरे 6000 स्वर्गदूत करे तब मुला यदि परमेश्वर आबला योजना अनुसार पूरा लदोबा पंसम थेजे 72000 भन्दा बढी स्वर्गदूत का दे पुहाबा हामसेल मुला तर परमेश्वरले योजना प्रभु येशु ख्रिस्त क्रुसी बलिदान तबदा पिनबा दुःख उठाइदिबदा अनि बौरी उठिबदा हिन्दा मुबला जब येशु ख्रिस्त छेक्ची दुःख पिन्जी क्रुस रिसेजी थे बेलरी परमेश्वर आबला लानन सेम खाजी चोट लाग्तीजी तर थेजे रङला योजना बदलाया दिनी यदि थेजे रङला योजना बदलाइ तिसी ख्रिस्ट येशुदा क्रुस रिसिबादा आदोन्मला विषम याङजे मुक्तिदाता आयाङसेला मुबला थेला हराङब सहनशीलता हिन्न परमेश्वर आबदेन ज्ञान शक्ति छाङमान से कदे मुसिनो प्रभु येशु ख्रिस्त क्रुसी बलिदान तपद रोका दिने तसी विषम चु परमेश्वर ल मुक्तिला नछ्याङ योजना हिन्बा मुबला पहिले याङ्गी चुरी शिव मुलाकी गेस्यमनी बकैचरी प्रभु येशुला पीडा पूर्ण प्रार्थना थेजे निकै प्रार्थना लबल मुला हे गला आबा तब हम सम्झु कचौरा न क्याम्जे हटाइदी बिन शिव तर नलाई इच्छा क्याम्जे आहिन रङलाई इच्छा रे तडिक मती 26:39 पद्री चुताम याङजे याङ बमुला याम्बागी लिच फेरि थेजे प्रार्थना लस्युजी हे आबा नै चु कचौरा थुङ्ब बेलरी चु हर्तिबा अहम सम रङलाई इच्छा पुरा तकै यदि एरङमा पीडापूर्ण प्रार्थना संसारिक आबजे
थेवला पांगसम ता रंगला योजना ता बदले आदिना टिबाहमला ना पांगसम कुडीसी टिबा आहमसेला परमेश्वर जे रंगला चाजे रंगला इच्छा अनुसार लसी को भी प्रार्थना संस्यूजी अनि थेजे रंगला भावना ता थान्दीसी थान्जे योजना ता बदले आदिनी परमेश्वर जे रंगला चादा हतेगुन थाबिन्जी प्रिय रो मागदे परमेश्वर ल सुन्दर योजना मुला नथ्याङ योजना मुला न्याङ छङ मान पापी मिका देता सोना लबला लागे तरे न्याङ जे अर्को ताम सिसेल मुला येशुला स्यालरी छेक्ति यहोदा भेडला अगाडि गेस्से मनेरी हाजी थे येशु ख्रिस्ला चेला मध्येरी कोर्की हिन्ना येशु ख्रिस्त चुङसी प्रधान के पास जा पोर्जी थेरी प्रभु येशु दा विभिन्न प्रश्न लजे अनि आजेब व्यवहार लजे अर्को ताम फेरी प्रभु येशु ला स्यालरी थो साजी गिल्ला लजे अनि फेरी कोर राजे छेक्ची अनि बेसरी लछार पछार लजे पापी कदेल उद्धार लबरी दहा बल मिदा थेन्जे मुआसे नि थे द सारन दुख पिन्जी थेन्जे येशु ला निन्दा लजे रोमी सिपाही कदेजेन येशु दा थो साजे प्रभु येशु जे बिरामी कदे फन्ना लमाले तांग बमी कदे जे येशु ता निन्दा लडी बमुला रोमा कदे न्यांग जे विचार लदो बमुला थेन्न लागे उदार लबरी दोहाबला येशु दा थेन्जे चोरंग लडी बमुला थेन्न न्याय कर्दा तसी दोहाबला येशु दा थेन्जे मुआसे ने थो साजे निन्दा लजे घृणा लजे गिल्ला लजे प्रकाश छ अध्याय सोह्र पदे पङ्गुमुला परमेश्वर आवदेन चाला सहनशीलता ता सिगो परमेश्वर जे रङला चादा निर्दय व्यवहार लमाले कुडीसी सैदीसी सियोजी थेजे रङला योजना ता बदलै आदिनी थेरङ तैरी नल प्रिय रोमा गदे न्याङला लागि येशु जे दुःख सैदीजी न्याङ जे थे विश्वास जीविसम थेजे न्याङ द पाप क्याम जे छुटकारा दोन्दमुला तिमीले वचन दिए रङ्गी त परमेश्वर जे प्रशस्त आशिष दुन्छु गई आमेन।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Sound FM. Studio time.
0: It's 7 p.m. Start to start building.
4: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगरपालिका पाँच सोलु खुम्बु

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना
1: अग्रणी सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रवाहने सेवा प्राप्ति को सहजीकरण नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन नपरी आप सेवा लीन हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कने गुनासो आए अधिकार कार्यालय प्रमुख सम्पर्क राष्ट्रीय
0: प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर
2: शर्मिला बधाई एसयू उत्तीर्ण
3: तिमी बधाई अलेज कहाँ पढ़ने भयो नि
2: मैं तो काठमंड को ट्रावेल सरस्वती नगर में रहकर रिलायंस इंटरनेशनल एकेडमी में पढ़ने निधो कर सके
3: मत कहाँ पढ़ने अन्योल में छु
2: के अन्योल में पढ़् हो हमी कक्षा दसम मिले पढ़ियो अब तीन संगे पढ़ऊ न तिमी रिलायंस में भर्ना भाई भैया
3: अनि त्यहाँ चाहिँ कुन-कुन विषय पढाई हुँदो रहेछ
2: त्यहाँ त विज्ञान व्यवस्थापन का विभिन्न विषय छानी छानी पढ्न पाइने रहेछ नि
3: हो र कुन-कुन विषय पढाइदो रहेछ त्यहाँ
2: त विज्ञान अनि व्यवस्थापन अन्तर्गत बिजनेस स्टडीज होटल म्यानेजमेन्ट कम्प्युटर साइन्स फाइनान्स जस्ता विषयहरू रोजी रोजी पढ्न पाइने रहेछ
3: ए ल उसो भए म पनि रिलायन्स नै जान्छु अनि त्यहाँको अन्य विशेषता चाहिँ के रहेछ नि
2: ल सुन देशभर का हजारों मावी मध्ये टप फाइव भित्र पर्न सफल दक्ष शिक्षकहरु द्वारा अध्यापन गराइने उत्कृष्ट नतीजा सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधार विषयगत अत्याधुनिक प्रयोगशाला अनि जिम्मेदार र उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति को समेत व्यवस्था रहेछ रिलायंस इंटरनेशनल एकेडमी सरस्वती नगर चाबहिल काठमाडौं गोपीकृष्ण हल भन्दा 100 मीटर पूर्व संपर्क 01 4822 336 48 12 445